और से जब तक राया गवाह है सब जीता है जीता है जीतेगा मिलकर सारे बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो हक बोलो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तेल की फराहमी के वक्त अची वो है, समूरी दुनिया जा जहाज पैंजू सरगर्मी शुरू कर। ईरान अमेरिका के आन मुआदो कबूल करते मजबूर कर, मफाम की याददाश्त जो मतलब दुश्मन से भरोसा करना है। आखिरी मुआदे लाए गालू सठ डी अंदर थन्दूँ, जैसे मुआदे जो एतराब न कर तो ईरान जवाब डी। ईरान के नायब परदेह वजीर है तो अमेरिका के सामूरी नाकाबंदी अज रात का खत्म थी वी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुआदे बाबत जल्द पैं बयान जारी कन्दी। मुआदे जो मतन सही बाद जारी कर वो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: ईरान आर न ठाहींदो नई मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं मज़ामती ग्रुपनि जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मनमंद सासा जारी कया वेंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में 14 नुक़्तनि वारी मसूद जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त मुआहिदे ते सहीन बाद अबन हुरमज़ जी नाकाबंदी ख़तम कई वेंदी। मसूदे में ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल बरामद ते पाबंदियूं हटाइण पिण शामिल आहे। अमलास में सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंगबंदी जो मुतालबो पिण कयो वियो आहे। अमरीका ऐं हुन जे इतिहादनि खे ईरान जे नए सिर तामीर लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन मुआहिदे जी तौसीक़ सलामती कौंसिल जे ठहराउ वसीले कई वेंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अमरीका ऐं ईरान विच में अमन मुआहिदे जी आज आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त अमरीका ऐं इस्लामी जमहूरी ईरान जे विच में अमन मुआहिदे जी गर्मजोशी सां आज इहा कयां थो। अमन मुआहिदो तकरार घटाइण ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ हिकु अहम पहिरियों क़दम आहे। ही मसबत अकबराई हिन अमल में शुरू सभिनी धुरनि जी मदमाणी क़यादत ऐं खे ज़ाहिर करे थी। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी क़यादत ऐं विज़न खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर जी इलाक़ाई इस्तक़ाम लाइ सां साबिर क़दम हिमायत तारीफ़ जे लाइक़ु आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: फरदकारी राबतन जो सिलसिलो जारी रहंदो। मुबारक ईरान सामने मुआहदो थी वो अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जो ऐलान सदर ट्रंप चवे अपने हुरमज ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी खत्म करण शुरू कर छी है जहाजन की अचवन जुमे का शुरू थी वेंदी अपने हुरमज में गुजरंदड़ जहाजन का टूल टैक्स न वरतो वेंदो दुनिया जा जहाज पैं सरगर्मी शुरू कन ईरान अमरीका के अमन मुआहदों कबूल करण से मजबूर किया मफामत की यादाश जो मतलब दुश्मन से भरोसा करण ना है आखिरी मुआहदे लाए गाल सठ डीन अंदर थन्दूँ जैसे मुआहदे जो एतराम न किया तो ईरान जवाब दी ईरान के नायब परदेही वजीर काजम गरीबाबादी है तो अमरीका की सामूरी नाकाबंदी अज का खत्म थी वेंदी ईरानी सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुआहदे बाबत जल्द बयान जारी कंदी मुआहदे जो मतन सयुन बाद जारी किया वो ईरान एटमी हथियार न ठाइंदो नई मिसाइल प्रोग्राम ए मजम्मती ग्रुप मदद कंदो ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मजमद असासा जारी कया वेंदा ईरान ए अमरीका विच में 14 नुक्तन वाले मसले जा तफसील सामू अची व्या अमरीकी मीडिया जो चवण है तो मुआहदे ते सहन बाद आपने हुरमज की नाकाबंदी खत्म कई वेंदी सऊदी में मसूदे में ईरान के तेल ए पेट्रो केमिकल बरामद से पाबंदी हटाने पिण शामिल है लबनान समेत सभी महाजन से फौरी ए मुस्तकिल जंगबंदी जो मुतालबो पिण वो है अमरीका ए उन इतिहादन के ईरान के नए सिर तामीर ला घट में घट 300 अरब डॉलर फराहम करना पौधा अमन मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल के ठहराव वसीले कई वी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा अमरीका ईरान विच में अमन मुआहदे की आजिया बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे तो अमरीका ए इस्लामी जमहूरिया ईरान में अमन मुआहदे की आजिया क्या तो अमन मुआहदों तकरार घटाने गालन जरिए अमन के अगते वधाने तरफ पेरियों कदम है अमन अमल के अगते वधाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत ए विजन के खिराज तहसीन पेश क्या तो फील्ड मार्शल सिदासमुनियो के इलाकई इस्तकाम तारीफ लायक है।

ਖੁੰਗਲੀਆਂ

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते।

की गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम. आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक. यहाँ में वक्त की बात करेंगे तो 11:21 जो कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त है तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है. और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. बट नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. तवज्जो खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब. वो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने वाली हैप्पी डेज ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको कहेंगे विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. शहरों शहरों शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परिस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आया नू सद बिस्मिल्लाह और जोर शाह नी हाउ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. और इसी पहले गाने के साथ हम प्रोग्राम में चलेंगे आगे. स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है.

Tech Music.

Tech Music.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का सैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: ब्यूटी फ्री ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में सही एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी ट्री ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। ब्यूटी को बना
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दबे खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना।

0: अब गाना सुनाओ जिसमें हम लेने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉल. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: असद बात कर रहा हूँ सकरण से.
0: असद बात कर रहे हैं सकरण से, बड़ी दिनों बाद नहीं आपने कॉल की? ओके, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ, गाना मुझे सुना दे आप.
0: सुना दे
1: सुना दे
0: ठीक है, आप सुनाएंगे तो मैं सुनाऊंगी ना. कौन सा गाना है? ओके, सुनाइए. चले मैं आपको सुना देती हूँ. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. 03000113488. अच्छा, सेगमेंट का रूल है माजरत के साथ, जो बंदा आके गाना गाएगा ना वही गाना मैं प्ले करूंगी. अगर आप मुझे सिर्फ टाइटल बता देंगे तब मैं प्ले नहीं करूंगी. रूल ये है कि गाना पड़ेगा तब आपका प्ले होगा. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो, गलती से कॉल लगी थी क्या? अच्छा, एक और कॉलर. हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाब लिगारी कोर्ट में साफ खान से, शहर खान खान रिंद.
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाओ.
0: जी मैं बहुत अच्छी, मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं.
0: ओके, और मुझे ये बताओ, सॉरी बताएं कि गाना सुनाएंगे?
2: जी
0: गाना सुनाएंगे.
2: चल आज तो मरम हराम के दिन है मेरा गाना कसीदा.
0: अरे कॉल कट गई भाई की, पता नहीं क्या कह रहे थे भाई. अच्छा एक और कॉलर लेते हैं जी, ट्राई करते हैं. हेलो
3: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं जी अलाउद्दीन बात कर रहा हूँ.
0: अलाउद्दीन कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: सक्खर से.
0: सक्खर से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम सुनते हैं?
3: जी जी, सुन के थक गए हैं, कॉल तो अभी लगी है भाजी.
0: सुन के थक गए, कॉल तो अभी लगी. अच्छा मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
3: गाना हम नहीं सुनाएंगे, आप सुना होता और लान्याजी का कोई गाना.
0: ओके जी, मैं सुनाती हूँ. और कुछ कहना है?
3: बड़ी मेहरबानी.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और ये थे कुछ स्वीट कॉलर्स जो कि हमने इंटरटेन किए, और इसी के साथ

प्ले करने जा रहे हैं एक और खूबसूरत सॉन्ग, और ये जो खूबसूरत सॉन्ग है इसको प्ले करके हम आपको बताएंगे आज का टंग ट्विस्टर कि क्या होने वाला है. सो हियर कम्स द सॉन्ग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, सुनेंगे एंजॉय करेंगे.

आपने कहना है कि लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए, ठीक है, ये कहना है। लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए, ये कह के दिखाना है। ये कहेंगे तो फिर जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को।

0: ऐं मर्दान में तरबियती जहाज़ किरी तबाह। ॿ पायलट शहीद। आई एस पी आर मूजिब तरबियती जहाज़ उॾाम दौरान किरी तबाह थियो, जंहिं सबबु ॿ पायलट शहीद थिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हमारा सेगमेंट बोलो तो मानी इसको हम कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स और कॉल्स सेगमेंट हमारा अच्छा जी आजकल जो टंग ट्विस्टर है वो ये है कि लाला ने लंबे लाल सॉरी लाला ने लंबे लॉन में लाल लड्डू लटकाए ठीक है ये कहना है लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए तो ये कह के दिखाएंगे

साथ साथ हम पहले कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी आ जाते हैं जब तक ये हमारी कॉल हैंग से हट जाए. अच्छा, मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के मुझे वसी होते जा रहे हैं. हमने ज्वाइन किया है फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने, और नजीर खोसू हमें सुन रहे हैं सोबलपुर बलोचिस्तान से. रिहाना खान कहती हैं कि मैं रिहाना खान भक्कर से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम नजीर खोसतो. वंस अगेन प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है. ओके, वेरी नाइस. 03000113488 कॉलिंग नंबर हमारा. लाला ने लंबे लॉन में लाल लाल लड्डू लटकाए ये कहकर दिखा रहे हैं आप लोग. तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. तो देखते हैं कि आज कौन विन करता है हमारे सेगमेंट को.

0: बदी बदी सी आवाज।
1: अच्छा मेरी आवाज समझ नहीं आती या कॉल पे नहीं आती
0: आवाज? भी थोड़ी बदी बदी सी आती जो हम बात करते हैं ना लोग कॉल पे, तो हमारी भी आवाज ऐसी आती है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: चले इसको हम देखते हैं क्या ये सीन है, मैं चेक करती
0: हूँ। हमारी आवाज आप तक पहुँच रही है ना?
1: ओके जी,
0: आप सुनिए क्या करेंगे सामने।

0: कि और कुछ कहेंगी मिसेस अली? ठीक है जी। अच्छा अम्मी की तबीयत ठीक है आप? चले
1: माशाल्लाह
0: चली जी जबरदस्त। चला पाक उनको मजीद और सेहत दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। 03000113488। एक और गाना प्ले कर रहे हैं जी। गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने। सो आपने कहीं नहीं जाना, आपने देना है मेरा साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली, हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू, वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र, सिर्फ़ इनसाइट विद नाज़िया मीर सां।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सर्च पे करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे गेंद, ना करू तुझे ब्लॉक ना करू तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद कहाँ से सुन रहे हैं और साथ ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये भी बताइएगा। टॉपिक को फॉलो कर रही है और साथ साथ इमदाद अली बलोच भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम इमदाद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में। अच्छा, मीर बेवस कहते हैं रिश्ता सुन रहे हैं, बिलो जिंदा है। बिलो ने कहाँ जाना है बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद सलमान के थे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलें फिर देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं। और इमदाद भाई कहते हैं आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, चलें अच्छी बात है, अच्छी बात है। मोलाई मुजाहिद लिखते हैं कि सिडो सॉन्ग प्ले करना, अच्छा तवां जेको ओल्डी गोल्डी गाना फरमाइश करना, उन्होंने मैं कोई गानो फरमाइश कयो। और सुफियान अहमद हमारे साथ हैं सांगड़ से, वेलकम करते हैं सुफियान आपको भी। अच्छा, नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ कहते हैं सो स्वीट योर शो, थैंक यू। अच्छा, मीर बेवस कहते हैं टॉपिक हमने बहुत बार ऐसा किया है, अल्लाह। या परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो। नियाज हुसैन मलिक हाय। मोहम्मद समान कहते हैं अच्छा, कहते हैं शादी के टाइम दुल्हन की सहेलियों को पहचाने से इनकार किया जाता है, ये टॉपिक है। क्या बात है मोहम्मद जमान भाई, तुसी वाकई भाई बड़े चलाक ब्रो हो। और इमदाद कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। नजीर कोसो में सुन रही बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया भाई जान। अच्छा, ये मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैदराबाद मटियारी से प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरे साथ बाबल खोसो हैं और सलाम सारी टीम को। ओके जी, वेलकम करते हैं आपको। बिलाल अली कहते हैं वहाँ जी टॉपिक जो जवाब हा माँ ईअं कयो आ आई कंदो आया हरू भरू कंहिंखे सुञाण खां इनकार कंदो आया, वॾो मज़ो ईंदो आहे। अला अजा ई ॿुधा चओ, ईअं तव्हां वॾो मज़ो ईंदो आहे। हकीकत ॿुधायां त वाकई मज़ो ईंदो आहे। बिल्कुल जी, बिल्लो जिंदा है और बिल्लो जिंदा ही रहने वाली है। और साथ साथ जो है ना, ये बिल्लो के इतने चर्चे क्यों होते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि बिल्लो भाई खर्चे करती है अपने ऊपर। और बिल्लो इस्तेमाल कर रही है वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप भी इस्तेमाल करें ताकि आपके भी चर्चे हो और आप भी बिल्लो की तरह फेमस रहे और हमेशा फेमस रहे। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डाल करते रहिए 03157990595।

टॉपिक समझो बाबा, टॉपिक समझो, टॉपिक यो रखियो आज ता मुखे बुधायो था छा करी तवाई कयो आहे के इंसान के तवा सुणाणी ता हो जो ठीक आ सुणाणो था ता उनके पर अगर ता का कोई पूछे त हन के ता सुणाणो था ता इनकार कर छो ना बाबा मा कोन सुणाणी दो आया समझो था ये कने ता कयो आए बुधायो तो मुखे दर्दे दिल मारे साथ मौजूद है। हेलो स्वीटी, कैसी है? ठीक ठाक। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक असा रोज एडन मानन के इग्नोर कहूं था कदे फील ही न था कहूं तो असा हन के सुणाणे चुका आयो ये भी थींदो आ। शहबाज हमारे साथ मौजूद है। हेलो। अच्छा हिदायतुल्ला अहमदानी, हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि वो पता नहीं क्यों प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे। चले कामों काजों वाले इंसान भी अच्छे होते हैं, कामों काजों वाले बने। और मुजाहिद बोजार क्या कहते हैं, टॉपिक मेरा

चलिए भैया, तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे को तैसा ही देना चाहिए। राहब हमारे साथ ही लाड़काना से, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। दर्दे दिल कहती है कि जिंदगी उस वक्त पुरसकून हो जाती है जब इंसान हर दुख, हर तकलीफ और हर आजमाइश पर अल्लाह के लिए सब्र करता है। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन। और हमारे साथ अनवर भाई कहते हैं गरीबन हाय भा केडियो गालियों कयो था यो तो हाल हवाल अनवर भा वाईटीएच ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाया वो कौन मेरो प्रोडक्ट लगाने जो इरादो कयो था अच्छा मोहम्मद अली कोसो कहते हैं अभी तो हमको आइटम खरीदना पड़ेगा क्योंकि इसकी तारीफ बहुत ज्यादा सुनते हैं। हाँ जी, तारीफ सुनते हैं तो आपको परचेज करना चाहिए, तो जरूर बचो ठीक है।

अच्छा दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक चंदा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। चलें क्या बात है जी आपकी। मोतिया सेतानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं एहसन अली बुगटी दारकाने का तमाम ससगर मौजूद आयो मोहब्बत हूँ प्यारे भाज। समीर क्या कहते हैं, ओके जी आबिद भाई भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो कहते हैं। मीर बेवस कहते हैं मेरे घर वाले कहते हैं आपको किसी भी लेकिन मैं अच्छा फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते। वैसे घर वाले तो कुछ भी कह देते हैं, उनकी इतनी ज्यादा बातें जो ना वो सीरियसली मत लिया करें। आप आपका जो दिल चाहे ना वो बस आप किया करें, ठीक है। आप इस्तेमाल कीजिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपकी खूबसूरती अब आपके हाथ में है तो लाजमी ट्राई करके देखिएगा। वासु भाई कहती है सिडो मां जवाब अना एढ़ो कम को भी ना ही कहो जड़े के ऐसा एड़ी तादी कई तब बुधाई तो मामा जरूर चले ठीक है। अच्छा ये मीरपुर खास से अब्दुल महर हमारे साथ बाजी वाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है जी। अच्छा अरिबा हमारे साथ ही अभी जान मेरी प्यारी दोस्त भाभी इरम कह रही है, हाँ जी बिल्कुल

जी, उसके अलावा हमारे साथ ही हाय आप कैसी हैं? मैं दिलरुबा फ्रॉम बेरिया रोड से काफी दिन बाद SMS किया है। बेस्ट VIP शो है आपका, मैं रोज सुनती हूँ दिल से आपको, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। एंड मास्टर मंजूर का ये वाला गाना लगाएगा बिल्कुल ना, मुझे फेवरेट गानों फरमाइश कयो आ त तवां जी पसंद जको न असल लाज़मी हलाइंदा। सो दिलरुबा तां जो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बदु पे। अच्छा अरीबा कहती यहाँ पे प्लीज प्ले ममताज मोलई, ममताज मोलई हलायूं था तवां जिलाए। जुलरी खां खालिक लाशारी हैं टॉपिक कहते लालची दोस्त जे कोंदो है ना मुंह सुना तो आहे उनन के सुनाण का इनकार कयो त बेहतर आहे। फरजाना परवीन जो गानो बुधराए जो। ओके जी बुधरायूं था।

क्या बात है मेरे लिसनर्स की, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जनाब, और डायल करते रहिए 03157990595। इमरान अली ब्रोही भाई लिखते हैं, कायम है जिनसे मेरी जिंदगी का राबता, या रब उनको अपनी रहमतों से हमेशा शादो आबाद रखना, अल्लाह पाक आपको खुशियों से खुशियों से भरपूर लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्यारे भाई आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। ओके जी, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए, और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम जो है ना न्यूज ब्रेक की जानिब जाने वाले हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूं, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: नौ शहरों
1: मीरपुर खास
0: लाड़काना
1: सक्कर।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल को से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं जनाब स्पीकर बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
4: पाकिस्तान की चाकड़ी कामयाब अमेरिका ईरान समूरन महाजन से जंग खत्म कर छी बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वो शुरुआती वायदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 9 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ बया शरीक थन्दा। कौमी असेंबली में खिताब कन्दे वजीर आजम शहबाज शरीफ जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। ईरान अमेरिका लबनान समेत समूरन महाजन से जंग रोकने जो ऐलान किया है। तारीखी वायदे की तकरीब 19 जून जुमे वाले ढी जिनेवा में थी जैसी मेजबानी पाकिस्तान कौ ही बिन मुल्क में अमन वायदो न पर डाप सिफारतकारी की फतह है। वायदे से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई समेत सभी के मुबारक दिया तो जैस तीन वायदे जहा समर आवाम ती पोचना सुख से न वेहंदुस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान से वायदो थे तस्दीक कर छी। डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो वायदे से सहन बाद जुम्मेवारे ढी आबद हरमुज भी खुली वो ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी भी खत्म कर शुरू कर छी है। जहाजन की अचुन जुमे का शुरू थी वी आबनाए हरमुज में गुजरदड़ जहाजन का टोल टैक्स न वरतो वो दुनिया जहा जहाज पैं सरगर्मी शुरू कन। नायब सदर जेडी वेंस है तो सदर ट्रंप ईरान के खतरे के खत्म करण में कामयाब रो है। वायदो 50 साल ती विच ओभर के तब्दील कर छी वायदे से विच ओभर में खुशहाली की शुरुआत थी। ईरान अमेरिका के अमन वायदो कबूल करण से मजबूर कर मुफाहमत की याददाश्त जो मतलब दुश्मन से भरोसो करण ना है। आखिरी वायदे के लिए गाल 60 डीह अंदर थन्दूँ वायदे जो एतराम न करो तो ईरान जवाब दी। ईरान के नायब परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी है तो अमेरिका की सामूरी नाकाबंदी अज का खत्म थी वी वायदे जो मतन सयन बाद जारी किया वो। ईरान के खातिम लंबिया है तो शिकस्त बाद अमेरिका इसराइल वट हथियार फिटा करण का सिवाय बो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार न ठाई नई मिजाइल प्रोग्राम में मजामती ग्रुप की मदद कद ईरान जहा 24 अरब डॉलर जहा मुंजमद असासा जारी किया वा। ईरान अमेरिका विच में तय थियल 14 नुकतन जहा तफसील सामू अची वा। अमेरिकी मीडिया वजह वायदे से सयन बाद आबनाए हरमुज की नाकाबंदी खत्म कई वी। ईरान के तेल ए पेट्रोकेमिकल बरामदाद तक पाबंदी हटाई व्यू। लबनान समेत सभी महाजन से फौरी मुस्तकिल जंगबंदी जो मुतालबो भी शामिल। अमेरिका संदस इतिहादन के ईरान की नए से तामीर के लिए घटे में घटे 300 अरब डॉलर फराहम करना पवंदा। अमन वायदे की तौसीक सलामती काउंसिल के ठहराव वसीले भी कई वी। सदर आसिफ अली जरदारी नायब वजीर आजम सागदार पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा ईरान अमेरिका वायदे की आजिया। सदर आसिफ अली जरदारी है तो मुफाहमत हतमी वायदे जो बुनियाद बनबी ए खिते में जटादार अमन कायम थन्द। नायब वजीर आजम सागदार अमेरिका ईरान वायदे के मुस्तहकम करण वाली कोशिशों की हिमायत कंदी। बिलावल भुट्टो जरदारी अमन वायदो तकरार घटाने ए गाल जरिए अमन के अगत तरफ पेरों कदम है। अमन अमल के अगत में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत विजन के किराज तहसीन पेश क्या तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी के इलाक इसकाम के लिए हिमायत तारीफ लायक है। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पारा ईरान अमेरिका वायदे से कौम के वाधायूं। सरदार अयाज सादिक तो पाकिस्तानी क्यादत अमन अवार्ड की मुस्तहक है। अमन वायदे में पाकिस्तान के किरदार से कौम के मुबारक दिया तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत के भी सलाम पेश क्या तो दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ ईरान अमेरिका वायदे से जुम्मेवारे ढी सयूं थी वेंदू। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल अमन के कामयाब करण लाए डी रात मेहनत कई। जापान के परदेही वजीर जो नायब वजीर आजम सागदार से फोन से राबतो ईरान अमेरिका वायदे समेत खिते की सूरतयाल से गाल। जापानी परदेही वजीर पारा ईरान अमेरिका अमन वायदो कराने वाली पाकिस्तानी कोशिशों की सारा बिन्हीं अगवान जो राबतन में रहने तफाक़। گڈل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں تے تھل معاہدے جی آجیاں چین ترکی سعودی عرب برطانیہ جرمنی فرانس اٹلی کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں اگوان چھو تے جنگ دے خاتمے سان دنیا میں امن جو نو دور شروع تھیندو اے عوامی مسئلہ حل تھیندا میدان میں تربیتی جہاز کری تباہ ب پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیتی اڈام دوران کری تباہ تھو حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہٰ عباسی شہید تھیا فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہن پارا حادثے تے دکھ جو اظہار صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھر وزیر محسن نقوی وڈے وزیر مراد علی شاہ بین پارا حادثے میں بن جانن کے نقصان تے افسوس جو اظہار

0: में बरकरार में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा कड़ियो ख़बर जवान ऐं शाखनि में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो कड़ियो ख़बर हैदराबाद रोड ते धरणो जागीर शाखल बहान ऐं शाखनि में पाणी छॾण जो मुतालबो मीरपुर माथेलो में नरली माइनर जे आबादगारनि जो पाणी जी खोट ख़िलाफ़ डीसी ऑफिस वारो धरणो आबादगारनि मूजिबि नरली माइनर जी पुछड़ीअ में पाणी न पहुचण सबबि ज़मीनूं टूट थी वियूं आहिनि पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाए फसल बचाया वञनि मीरपुर भठोरो तालके में पाणीअ जी सख़्त खोट आबादगारनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो आबादगारनि चयो आहे त लखे रुपया ख़र्च करे पोखियल सारियुनि जो बेजारो पाणी न मिलण सबबि सड़ी रहियो आहे पाणी ॾिनो वञे घोटके वेझो तर्थ बिरादरी जी बिंदुरियुनि में जहिड़ो नौजवान क़तल जहिड़े दौरान नौजवान वहीद तर्थ क़तल थी वियो लाश अस्पताल मुंतकिल धुरियुनि में छिकताण वधी वई
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की

0: अच्छा प्रोग्राम ॿुधो पिया असांजो। अच्छा मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम जो नालो अचे थो तव्हांखे, कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया? वाह वाह वाह वाह, इहो ॿुधायो त तव्हां इस्तेमालु कई आहे या सोचो था त असां वठी ईंदासीं? चलो वठी अचिजो। ऐं कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाईंदा, नाइट क्रीम हणंदा या साबुण या फेयरनेस क्रीम? चलो इहो त ज़बरदस्त आहे, ज़रूरु तव्हां ट्राए करे ॾिसजो। ऐं टॉपिक ते छा चवंदा? चलो सही आहे। कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? जी जी जी जी ओके, थैंक यू सो मच। प्यारे भाजी कॉल हुई असांजे प्रोग्राम में, ऐं बिल्कुलु हू असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहिनि, हुननि खे नालो बि ख़बर हुयो। इन्हनि माण्हुनि मां अंदाज़ो थींदो आहे जेके प्रोग्राम जो नालो ॿुधाईंदा आहिनि त ख़बर हूंदी आहे त हीउ माण्हू प्रोग्राम ॿुधंदो आहे। जिन खे नालो न ईंदो आहे न, बसि उहे उहो माण्हू हूंदा आहिनि, बाबा बसि प्रोग्राम हले थो, कॉलिंग वठे थी अदी, हा कॉल कर। सो अगरि तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे पोइ प्रोग्राम में कॉल कयो था त हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं इहे सुठा मैनर्स हूंदा आहिनि। उन खां अलावा कॉलिंग नंबर आहे 0333221322N88, तव्हां बि कॉल करे सघो था। नेक्स्ट कॉल अचे थी, ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके राशिद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है?
1: बिल्कुल
0: एकदम अलहमदुलिल्लाह, मैं ठीक, मजे में आपकी दुआ के साथ साथ। मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम
0: चले, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं आज भी आप सुन रहे हैं मेरा शो?

0: सुनेंगे।
1: ठीक है, ओके, मतलब कैसे हो, सबको सलाम, जो यहाँ जहाँ तक आपकी आवाज आ रही है।
0: चलें, थैंक यू सो मच राशिद भाई हमारे साथ मौजूद, मेहरापुर से ही हमारा शो सुनते हैं, बड़ी अच्छी हमारे लिसनर हैं, कभी मैसेज करते हैं कभी कॉल करते हैं लेकिन प्रोग्राम डेली सुनते हैं। ओके जी, आपकी ये मोहब्बत ही, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332132288। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जुल्फकार भाई, ठीक आयो? अच्छा, प्रोग्राम बदो प्या। अच्छा अच्छा, मुख्य बुधायो तो प्रोग्राम ने नालो छाए। वाह वाह वाह वाह, इस्तेमाल कयो प्या?
1: जी जी, हमारे में तो काम में लेके साबुन आया, साबुन आने जा रहा है।
0: अच्छा, साबुन आ ही,
1: साबुन आने जा रहा था, पर मिले कौन दो?
0: मिले न तो तजे को नंबर बुधाई ने प्रोग्राम में ते एक दफा ता कॉल करे दिस जोनन के चो तो बाबा इतने तो मिले ही प्रोडक्ट। चलो मुख्य बुधायो तो टॉपिक बुधो था जी प्रोग्राम जो उन दी छा चवंदा
1: जी आपा के गुजेदार का गेटा चाणो खते न त मुनाफी दी कोनी।
0: सही केडन दोस्तन के याद कंदा
1: सजन दोस्तन के जे के बुधार बा सलाम।
0: चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहब्बत हुआ प्यारे भाजू ऐं ज़ुल्फ़िकार भा तव्हां सां सगन मौजूद आहियो, थैंक यू सो मच जी, इलाही सुठो लॻो प्यारे भा सां ॻाल्हाए। मतिलबु इहो मां नोटिस कई आहे हिकिड़ी ॻाल्हि, हिकिड़ी ॾींहुं प्रोग्राम में सही कॉल्स अचनि थियूं, ॿिए ॾींहुं वरी सही न थियूं अचनि, माना अॼु सही अचनि थी न सुभाणे कॉल्स न वठंदासीं सही। थोड़ी हेरा फेरी कंदासीं, ॾिसूं पोइ मसलो सही थिए थो या न। चलो नेक्स्ट कॉल जी तरफ़ अचूं था, ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरु मौजूद आहे? झंडो भरी वारो भाउ हूंदो न, अला दड़का ॾींदी। झंडो भरी वारो भाउ आहे। झंडो मरी वारो न आहे, शुक्र आहे, शुक्र
1: आहे।
0: चलो सुठी ॻाल्हि आहे, प्रोग्राम ॿुधो पिया प्यारा भा। अच्छा, मूंखे ॿुधायो नालो छा आहे मुंहिंजे प्रोग्राम जो? वाह, नालो ॿुधायो हिन प्रोग्राम जो। वाह वाह वाह वाह, इस्तेमालु कई अथव वाइट एश ब्यूटी क्रीम?
1: अॼु अञा मां न वरितो आहे, कूड़ मूंखां थींदो ई न आहे।
0: कूड़ ॻाल्हाइजे बि न, कूड़ ॻाल्हाइजे बि न।
1: बिल्कुलु मटियारे मां वठणु वेंदुमि।
0: चलो सही आहे, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदव? चलो मां हलाइण जी कोशिश, चलो चलो मां हलाइण जी कोशिश कयां थी। थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई, ॾाढो सुठो ॻाल्हाइण आहे, माशाल्लाह तव्हांजो, ईअं हमेशह ख़ुशि रहो। ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। नेक्स्ट कॉल, हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केर असां सां गॾु मौजूद
1: आहे?
0: कौन, आवाज कटे तो?
1: हसीब।
0: हसीब किथा कॉल कया?
1: लाड़काणी का।
0: लाड़काणी का प्रोग्राम बुधंदा हसीब असांजो?
1: जी जी बुधंदा।
0: अच्छा हसीब, नालो इलाही माशाल्लाह सुठो आहे तव्हांजो, मूंखे ॿुधायो त असांजे प्रोग्राम जो नालो अचे थो तव्हांखे? जी ओके, इस्तेमालु करे ॾिठी अथव या सिर्फ़ु ॿुधो था? चलो इस्तेमालु कंदा आहियो, कीअं लॻी
1: आहे?
0: वाह वाह, माना वणी नी? वाह वाह वाह वाह, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो हसीब? चलो थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई, माशाल्लाह। अलाए छा थियो। चलो उन खां अलावा नेक्स्ट कॉल जी तरफ़ अचूं था, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूद
1: आहे?
0: अयाज भा, छाला खुश आयो? अलहमदुलिल्ला, मज़े में। प्रोग्राम ॿुधो पिया अयाज भा, कहिड़ो प्रोग्राम आहे, नालो त ॿुधाइजो। कहिड़ो? वाह वाह वाह वाह, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, सभु वाइट एश पिया कनि, पहिरियों माण्हू जेको जंहिं डी स्किन कयो आहे। वाह वाह, इहे मोहबतूं आहिनि तव्हां भाइरनि जूं, इहे तव्हांजी सिकाए जे अञा ताईं असां हलंदा अचूं था।

0: अच्छा मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा? थैंक यू सो मच प्यारा भाउ अयाज़, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई, इलाही सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए. ऐं कॉलिंग नंबर आहे 03221322288, सभु डबल आहिनि बाबा. हुन खां अलावा हीअ वरी कॉल वठूं था, ॾिसूं त केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: खालिक भाउ जी कॉल लॻी वई आहे. छा हाल आहे खालिक भाउ, ख़ुशि आहियो? मां सफ़ा मज़े में आहियां. प्रोग्राम ॿुधो पिया? वाह वाह वाह वाह, बिल्कुलु. तव्हांजा मैसेज मूंखे मिलंदा आहिनि. मूंखे ॿुधायो त तव्हां हीउ प्रोडक्ट लॻायो था जेकी मां ॿुधायांव थी. वाह वाह वाह वाह, दिलि ख़ुशि करे छॾियो अला तव्हां मुंहिंजी. अच्छा जी जी, मैसेज न पढ़ियो आहे तव्हांजो शायदि, अलाए पढ़ी छॾियो. बिल्कुलु फर्ज़ाना परवीन, तव्हांजे लाइ हलायूं था. तव्हां माशाल्लाह अॼु प्रोग्राम में इलाही सुठी सुठी ॻाल्हियूं कयूं आहिनि. ऐं कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू प्यारा भाउ, प्रोग्राम में तव्हां कॉल कई, माशाल्लाह. जॾहिं कॉल लॻंदी आहे सभिनी माण्हुनि जी, जॾहिं वरी स्मूथली कॉल हलंदी आहे त पोइ वाक़ई मतिलबु मज़ो ईंदो आहे कॉलर सां ॻाल्हाइण में बि. ऐं जॾहिं वरी थोरो आवाज़ में जेको आहे न थोरो मज़ो न हूंदो आहे त पोइ दिलि चवंदी आहे त कॉल्स बस न वठूं. सो इहो डन थी वियो त सुभाणे न वठंदासीं, हिकु ॾींहुं छॾे ॿिए ॾींहुं वठंदासीं, ठीकु आहे. सो बिलाल क्या कहते हैं सिद्रा मुस्कान, जो मजा लोगों को जान बूझ कर पहचानने से इनकार करने में है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं. यह तो शायद तवा गाल सही चो पया. सो इंजॉय कयो बाबा जिंदगी, जेका ना ओ हेतड़ी तव सफा नंढड़ी तव, उनके तवा अगर इंजॉय नथा कयो त मतलब ता केड़े कम जायो. सो ता पांजी जिंदगी के इंजॉय कयो आई मजा कयो आई वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टीस स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो. टाइम टा बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था, वो मोटी तवानी जल्दी जांदी सफा ओ ही वनी ओ ही अचू था. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेज and D Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products. Lagaiye aur khoobsurat ho jaiye.
2: GA FM. Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GA FM 88 Network. GA FM छा अहां मुस्तक़बिल जे जदीद डिजिटल महारतुनि सां पंहिंजे कैरियर खे मज़बूत बणाइण चाहियो था? त पोइ तव्हां लाइ ख़ुशख़बरी आहे. ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर में नैफटेक ऐं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम स्किल्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम तहत मुकमल तौर ते मुफ़्त दाख़िलाऊं जारी आहिनि. टिन महीननि जे मुख़्तसिर ऐं काराइते कोर्सेज़ में शामिल आहिनि AI फॉर एवरीवन, फ्री लॉन्चिंग ज़रिए ऑनलाइन कमाई, ग्राफिक डिज़ाइन ऐं वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. जेकॾहिं तव्हां इंटरमीडिएट पास आयो त ही सुनहरी मौको तव्हां जे लाइ आहे. रजिस्ट्रेशन लाइ पंहिंजे CNIC इंटरमीडिएट जा सर्टिफिकेट ऐं पासपोर्ट साइज़ तस्वीरूं तयारु रखो ऐं अॼु ई दरख़्वास्त ॾियो. ऑनलाइन अप्लाई करण लाइ विज़िट करियो nsis.navdtc.gov.pk या राब्तो.
3: ख़ूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

मेरे लिए हर रात एक सजा हो। और शायद इसीलिए बेवफा हो। बेवफा हो।

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

You boy, I feel incredible. Time spent with you so unforgettable. Okay, जी और ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा मस्कान. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं आप कैसी हैं मेरी प्यारी फजीला. और कहती हैं कि सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को. और कहती हैं मैंने तो नहीं बताना. हाँ जी बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू. जी अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा चलो ठीक है. तमाम चीजी गालो ही तो पोस्ट सही है. दर्द दिल कहती है कि सितारों में रहता है बस शो करने आता है मुंह जो जानी.

नला कसम से नाया भूली, कसम से नाया भूली, पर मिलो ही ना मैं छा कया से। अच्छा मीर बेवस कहती लगी तू अज, हाँ यो वाकई जो प्ले रहती थी इन लाइ सु तवे अचण पव सही सु गाना बुद्धासी अज जहा गाना रेजी वन सुन जहा गाना हल्दा सही मानोला चगड़ भाष से गुड मौजूदा मिठानी का ठीक आया प्यारा भा तुम बुधा कि मजे में खुशबाश

क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना। दर्द दिल कहती अलीजा के साथ मोए मोए हो गया, कॉल नहीं लगी उसकी। मैं भी सोच रही थी अलीजा की आजकल कॉल नहीं लग रही है, ये क्या मसला है, दया कुछ तो गड़बड़े। अच्छा अच्छा था जो अदी अगर आऊं वठण वणा अगर हु पैसा घुरे त केंजो नंबर लगाया कोई तवा के डायल करनो है 03 15 799 0595। अच्छा मता है ना के डायल कयो तो इन मौके ते कुटकी करा दो जा। अच्छा बिलाल कहते हैं हाने माँ हर रोज इंदम ई न सैया बाबा अच्छो और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम जी, वेलकम। ही गानो हलायो आज जी फरमाइश असांगे फहाद भाई कई मुझे शायद ख्याल में सो ही गानो बुधनासी हिकड़ी शायरी आ जका इन सा गड पढ़ना सी। अच्छा जब भी पैनल पर मैसेज करें ना तो अपना नाम लिखा करें, ठीक है। अच्छा ये तहमीना हमारे साथ है, क्या बात है तहमीना, आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा है, सो बहुत शुक्रिया। और सोबल अली हमारे साथ है, तमाम जो भी मोहब्बत हुआ प्यारा भा प्रोग्राम बुधो प्यार।

तुम्हें पता है। अम्मी हमेशा कहते हैं अपना पहला तीर तुम पर वही चलाएगा जिसे तीर अंदाजी तुम सिखाओगी। अब इसी बात पर एक शेर है, शायर जनाब लिखते हैं कि और अब वो लोग मेरी राह की दीवार है, और अब वो लोग मेरी राह की दीवार हैं जिनको मैंने अपने अंदर से गुजर जाने दिया। आपकी पैरों के नीचे जमीन वही खींचते हैं जिनको आप उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। आपके खिलाफ जहर वही उगलते हैं जिनको आप बोलने का हुनर देते हैं। आपसे हसद वही करने लगते हैं जो उरूज की दुआएं करते ना थकते थे। मुश्किल में सबसे पहले अक्सर वही हाथ छोड़ते हैं जिनकी मुश्किल में कभी आपने उनका हाथ थामा था। अगर जा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जहां बुरे बसते हैं वहीं अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन बनाकर जांचने से बेहतर है जांच कर ताल्लुकात बनाइए, ताकि ना अहल लोग दिल की ऊंची तख्तों तक कभी ना पहुंच पाए।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ने लुबनान से समेत तमाम मुहादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं है स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
2: पाकिस्तान की ठियाकड़ी कामयाब, अमेरिका ईरान समूरन महाजन से जंग खत्म कर छी। बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वो शुरुआती वायदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 19 जून से थन्द। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए बया शरीक थन्दा। कौमी असेंबली में खिताब कन्दे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। ईरान अमेरिका लबनान समेत समूरन महाजन से जंग रोकने का ऐलान किया है। तारीखी वायदे की तकरीब 19 जून जुम्मेवार ढी जिनेवा में थन्दी, जैसी मेजबानी पाकिस्तान कन्द। ये बिन मुल्क में अमन वायदो न पर डाहप ए सिफारतकारी की फतह है। मुआहदे से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खानाई समेत सभी के मुबारक दिया तो जैस तुआहदे जहा समर आवाम

यकीनन हमारे ये जो SMS होते हैं, ये छोटे छोटे जो पैगामात होते हैं, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये आपकी जिंदगी में मजबूत तब्दीली जरूर लाती होगी। सामिन, हम रोजाना दोपहर 3 बजे करते हैं आपको ज्वाइन और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला आपसे गुफ्तगु शनीद का ऐसे ही जारी और सारी रहता है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे कि आप देखकर सजदा रेज हो जाओ, दुनिया और आखिरत की भलाई आपका मुकद्दर हो, रहमत बरकतें हमेशा आपके साथ हो, खुशियाँ आपकी मुंतजर हों, कामयाबी हमेशा आपके साथ हो, जहाँ जाओ अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, हर शर हर फितने से महफूज रखे, हर दुआ आपकी कबूल हो, सब ख्वाहिशात आपकी पूरी हो और आप हमेशा हमेशा रब के शुक्र गुजार रहें। यही है आप सबके लिए हमारी दुआ, दिली दुआ। और जनाब, आज किस हवाले से गुफ्तगू होने वाली है हमारी और आपकी, तो जनाब

सबसे पहले क्या चीज उठाकर भागेंगे? और इंटरेस्टिंग रिप्लाई देने के लिए आपने डायल करना है 03133615688 SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MPK स्पेस नाम और पैगाम रवाना करना है 8881 पर। मैं मूव करती हूँ आपकी कॉल्स की जानिब, जानना चाहूंगी लिसनर्स से उनका रिप्लाई। खुदा ना खास्ता आपके घर में आ

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8
2: हर उहा ट्रांसपोर्ट जेका हले थी उते तव्हांजा गीत था हलनि ताके केदो फील थे त मुझे हर जगह ते मुजा गीतन बसन में मुजा इन साई
3: बसन में टिकटॉक ते बिल्कुल ट्रेंडिंग में डालन
2: अकेलाई आर्टिस्ट ता जा गाना मना ये समझो गाए करे वो स्टार थी
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन खुश रखे छ त उए जदे जदे बियो को आर्टिस्ट मुजा गीत गाईदा त मुके खुशी थिंदी आ हां ये अल्लाह पाक संजा ही नौजवान है ये सुठी गाला मुजे गीतन के जदे पाण वरी बीर गाईदा है त इलाई सुठो लगंदो आ मुके बुरो न लगंदो आ खुशी थिंदी आ तो मुझे इन लायक समझो तो मुझे गीतन के हर जगह से घड़ी घड़ी उन्हें रिपीट कर भी गायन पाया तो यह खुशी जड़ी गाला मुझे
2: या वड़ी प्राउड की बाकी गाला है।

0: से मेरी छुट्टी से आप की ओर से गुजारिश है, अगर 1000 रुपए मंथ के लिए फिक्स करेंगे तो हम लोग देने को तैयार है, क्योंकि हम 2007 से पुराने लिस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 98 दूसरे प्रोग्राम मुख्तलि चैनल से अभी अल्हम्दुलिल्लाह 88 को हम लोग क्या क्या लगाते हैं, लेकिन हमारे पास नशी अपनी कोचरी में है इंतजाई स्टेशन में, जैसे आपका जो टीवी के स्टाफ है आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, तो हमें चार्जेस लेंगे तो हम आपका हाथ के देने को तैयार है। हमें इंतजाई मजबूरी है प्रोग्राम सुनने की, इंतजाई मजबूर होते हैं। नेट यहाँ पर नेट की तो सहूलत नहीं, हमने रेडियो का खर्चा करा है, वो तो कम से कम हमारे नशिया थाने पहुँचे।
1: हो गई आपकी बात कम्प्लीट, चलें बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू।
0: और खैरियत है
1: जी, अल्लाह का शुक्र है।
0: चलो ठीक है, बस ये बात आप गौर करें, अगर जिससे जितना भी हो हमें नशिया पहुँचा है इंशाल्लाह ताला। हमारे बहुत तकरीबन हमारा दुकान है यहाँ पर लगभग, हमारे पास रात के टाइम में खुदा की कसम है हमसे 30 से 40 बंदे आगे आपके प्रोग्राम और हेडलाइन के लिए करने को तैयार होते हैं। हम क्या करें, हम लोग कमरों पे भी ऊपर चढ़ते हैं, छत पे जाते हैं, फिर भी हमें नशिया नहीं मिले, हम बहुत परेशान हैं इनफाइन मॉडल के साथ।
1: चलें बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। और मैं माजरत के साथ आपको बताती चलूं, मैं नाचीज किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क नहीं हूं कि आप मुट्ठी गर्म करने की मुझे ऑफर करेंगे तो मैं कहूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले आइए। तो पहली बात तो ये बहुत अफसोस की बात है, पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, जाए इस काम के लिए भी हमें कायदे आज़म का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारा एक प्राइवेट इदारा है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो हुकाम बाला तक पहुंच चुकी है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है, रेडियो सुनने के लिए जहन्नुम खरीद ना करें, मुझे तो माफ़ी रखें। नेक्स्ट कॉलर की जाने चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: वेलकम कहेंगे निदा, आपको क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: आपने पहचान लिया?
1: हाँ जी, कुछ कुछ लिसनर्स की आवाज़ें थोड़ा अलग होती हैं ना, तो पहचान में आ जाती हैं, कहीं कहीं मेरी भी ये जो तुक्के वाली है वो फेल हो जाती है। नहीं पहचान पाते।
2: मैं टॉपिक के हवाले से ये कहूँगी कि मैं कुरान पाक लेके आऊँगी पहले सबसे।
1: ठीक है, ये काले सिद्दीकी साहब भाई ने भी कहा, आपने कहा, अब देखो एक चीज नोट कर लो, ठीक है, 4 बजने में 1 मिनट है, अब जो दूसरे घंटे में लिसनर आएंगे ना वो सब यही बात करने वाले हैं। मैं नजूमी नहीं हूँ लेकिन यहाँ कॉपी कल्चर बहुत है। देखिए ये तो बहुत ही मुकद्दस किताब है, ये हर चीज में अव्वल है, ये हमारी सांसों से भी पहले है, ठीक है। और जैसे अभी मैं किससे कहूँ कि बहुत दिल चाह रहा है कहीं घूमने फिरने का, कहीं चलना है, आप बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, फिर 500 लोग कहेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब, अरे वो तो सबकी ही पहली दिली ख्वाहिश सबकी ही होती है। तो ये हमारे लिसनर जो है ना, देखते हैं नेक्स्ट आवर में क्या करते हैं, क्या कहेंगे निदा सब सुनने वालों से।
2: अलीगढ़ शो सुन रही है और मेरे वालदैन भी शो सुन रहे हैं।
1: माशाल्लाह जबरदस्त, अल्लाह ताला आपके वालदेन का साया आपके सरों पर सलामत रखे, उनसे दुआ की रिक्वेस्ट है अलीजा को कहना चंदा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अलीजा क्या लेके भागेगी, अलीजा से पूछे। अलीजा सबको शोर करके घर से बाहर लेके जाएगी, ये ठीक है। ओके निदा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, जजाकल्ला, सेम टू यू। ओके, और जनाब यहाँ पर बोलती बंद करनी है, मैं नहीं बोल सकती, अब जाओ, मैं नहीं बोल दी। ओके नहीं बोलती भाई, बिल्कुल भी नहीं बोलती। अरे जनाब नाराज थोड़ी ना हूँ, ब्रेक टाइम है, ब्रेक का पॉइंट अगेन तवांगे ज्वाइन करना सी।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध जी नए माली साल की बजट 26-27 जी बजट पेश कर दो। पेंशन में 8 ऐं पघारनि में 10 सैकड़ो ताईं वाधि जो ऐलान थियण जो इम्कान। सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रुपियनि खां घटि रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सिहत ऐं तालीम वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वेंदी। वर वज़ीर मुराद अली शाह लगातार 10वें बजट पेश कंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हुई परेशान हालत में उसका सहारा बन जाए, अपने आप को बचाए किसी को तकलीफ देने से, किसी के आंसू की वजह बनने से, किसी के तड़पता हुआ छोड़ने से और किसी के गम का जरिया बनने से।

0: राज, मैंने आपसे पूछा था जब आपके घर में खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या लेकर भागेंगे, इस हवाले से आपकी इच्छा निकाल जो है मैंने सोचा कुछ और भी हम शामिल प्रोग्राम कर ले। और मैं अपने लिसनर से हमेशा यही कहती हूँ, आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप कॉल किया करें तो कोशिश किया करें टॉपिक को फॉलो किया करें। आरजे जो है इतनी मेहनत से सोच के रोज एक नया मौजू गुफ्तगू आपके लिए लेकर आते हैं, और हम मशरिक की कह रहे होते हैं, आप लोग मगरिब की कह रहे होते हैं, तो फिर वो जो हमारी मेहनत होती है ना, वो जो है फिर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, हम जो है इतना सोच के इनके लिए टॉपिक लेके आते हैं और इनको जो है टॉपिक पे ही बात नहीं करनी, तो फिर बेहतर है बंदा जो है ना इनसे टॉपिक के बारे में कुछ पूछे ही नहीं, ऐसा ही बगैर टॉपिक के भी प्रोग्राम में जो है ना मजा नहीं आता। चले जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? तुक्के लगा नहीं सकती, वक्त बहुत कम है, प्लीज आप बता दो।
1: आप बता दो ना, मैं मैसेज करती हूँ आपको।
0: अस्मा बात कर रही है।
1: कैसी आप?
0: मैं गुड, मैं अच्छी, आप बताओ आप ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, टॉपिक के हवाले से तो आपने बताया था आप अपने घर वालों को लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगी। चले ठीक है, और जी टॉपिक के हवाले से तो आपने बात कर ली, कुछ और कहना चाहेंगी? सब सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी फैमिली जो होती है वो ही हमारी हर हाल में कदम ब कदम हमारे साथ होती है, तो उनका साथ बहुत अहम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, आप शामिल प्रोग्राम हुई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह इजाजत ले ली जाए आज के इस प्रोग्राम में, हमारा और आपका साथ ही

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जी खात्मे से दुनिया में अमन जो नओ दौर शुरू थींदो ऐं अवामी मसला हल थींदा।

0: सिंध में पाणी खोट बरकरार, मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। कड़ियूं गवर्नर जे वाहन ऐं शाखुनि में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि पारां कड़ियूं गवर्नर हैदराबाद रोड ते धरणो हयो वियो। इमामवा जागीर शाख समेत मुख़्तलिफ़ वाहन ऐं शाखुनि में पाणी छॾण जो मुतालबो। मीरपुर माथिलो में नरली माइनर जे आबादगारनि जो पाणी ख़िलाफ़ डी सी आफ़ीस वारो धरणो। आबादगारनि मूजिब नरली माइनर जी पुछड़ीअ में पाणी न पहुच थी वियूं आहिनि। छड़ ताईं पाणी पहुचाए फसल बचाया वञनि। मीरपुर बिठोरो तालके में बि पाणी जी सख़्त खोट, आबादकारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो। अनमोल उर्फ पिनकी अॻूणे मुड़ुस खां मंशियात ठाहिण सिखी तलाक बाद पंहिंजो कमु शुरू कयो। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ जो मंशियात केस में अबूरी चालान कराची जी अदालत में पेश। टिन औरतुनि समेत पंज जवाबदारनि खे मफ़रूर ॼाणायो वियो। 16 शाहिदनि जी फहिरिस्त बि शामिल। अबूरी चालान मूजिबि अनमोल उर्फ पिनकी 16 सालनि खां मंशियात जो कमु करे रही आहे। मुलज़िमा कराची जी पोश एरियाज़ में मंशियात विकिरो कंदी हुई। संदसि घणो कमु ऑनलाइन हलंदो हो। इस्लामाबाद में घरू तकरारुनि तां हिक ई ॾींहं में ॿ औरतूं क़तल। शालीमार थाणे जी हद A112 वटि जवाबदार मुज़म्मल पंहिंजी घरवारी खे तेज़धार औज़ार जा वार करे क़तल कयो। घोरी टाउन में बि रिटायर्ड इंस्पेक्टर तारिक बि घर वटि बड़ता पंहिंजी ज़ाल खे पिस्तल जा फायर करे क़तल कयो। जवाबदार फरार। दादू जे कचे वारे इलाइक़े में ॿ निंगरियूं उड़ी विघे फोत। ॻोठ अली खान खंड में 24 कलाकनि दौरान 16 महीननि जी उजाला ऐं निंगरी आयत उड़ी विघे फोत थियूं। ॻोठाणनि ॿुधायो त ॻोठ में केतिरा ई ॿार उड़ीअ जी मूज़ी मर्ज़ में मुबतला आहिनि। सिहत खातो टीमूं मोकिले उड़ीअ में मुबतला ॿारनि जो इलाज कराए संदनि ज़िंदगियूं बचाए। برطانیہ میں 16 سالن کا گھٹ عمر وارن بارن جی سوشل میڈیا جی استعمال تے پابندی لاگو۔ برطانوی وزیر اعظم پابندن جو اعلان کندے چوت بارن کے آن لائن خطرن کا محفوظ رکھن لائے سوشل میڈیا جی استعمال تے پابندی لگانے جو فیصلو کیو آئے۔ بارن جی والدین اے تعلیمی ماہرن پاراں فیصلے جی آچیاں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध जे नए माली साल जी बजट 17 जून 2018 डी पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मन जी पघारन में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मन जी पेंशन में 8%, पोरियतन जी माहवार उजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 2018 डी 2 वगे तलब करे वरितो। बजट की मंजूरी लाए सिंध काबीना जो इजलास भी थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपयन का घट रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वारन मनसूबन के अहमियत दिनी वेंदी। वडे वजीर मुराद अली शाह नाणे वारे वजीर की हैसियत में 9 भेरो सिंध की बजट पेश कंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अपना हुर्मुस मुकम्मल तौर खोलियो वियो आहे ऐं सामूंडी जहाजनि जी अचवञ बि शुरू थी वई आहे। अमरीकी सदर सोशल मीडिया ते जारी बयान में चयो त अपना हुर्मुस मां वॾी तादाद में तेल सां भरियल जहाज गुज़री विया आहिनि। सामूंडी जहाजनि जी अचवञ लाइ ॿिया बि सामूंडी लंघ मौजूदु आहिनि। माहिदे जो मकसद दोहन के माफ करण या विसारण नाहे। ईरानी कौम पंहिंजी क़यादत खां महरूम थी, अमरीका इसराइल जे ज़ुल्मनि खे कॾहिं बि न विसारींदासीं। अबना हुर्मुस जा समूरा मामला ईरान ई ॾिसंदो। लबनान समेत समूरनि माज़नि ते जंग ख़तम थियणु घुर्जे। अमरीका सां माहिदे बाद ईरान जो बाज़ाबता मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त असां वॾियूं क़ुर्बानीूं ॾेई पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो। ईरानी अवाम पंहिंजी फ़ौज जो भरपूर साथ ॾिनो। आलमी बिरादरी इसराइल ऐं अमरीका जे ज़ुल्मनि जी मज़म्मत करण में नाकाम रही। अमरीका सां माहिदे ते जुमे ते जनीवा में सहियूं कयूं वेंदियूं। सहियुनि खां अॻु ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्कनि जा दौरा कंदा। अमरीका खे ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाइ डिघो सफ़र करणो पवंदो। ईरान हाणे वधीक ताक़तवर थी उभरियो आहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
2: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू खुद की मजबूती का न्यू लुक
1: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून 2024 दिहाड़े पेश की वे थी। सरकारी मुलाजमन की पगार में 10%, रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 8%, पोरतन की माहवार अजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 2:40 तलब कर वरतो। सिंध असेंबली की बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी ला सिंध काबीना जो इजलास भी थी। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपये का घट रहने जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वन मनसूबन के अहमियत दिनी वी। वो वजीर मुराद अली शाह नाणे वे वजीर की हैसियत में 10 भेरों सिंध की बजट पेश कंदो। आबनाए हुरमज मुकम्मल तौर खुली वो है। सामूंडी जहाजन की अच वंज भी शुरू थी वही है। अमरीकी सदर के नई दावा सामू अची वही। सोशल मीडिया से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो आबनाए हुरमज में वही तादाद में तेल से भरल जहाज गुजरी वन। सामूंडी जहाजन की अच वंज ला बया भी सामूंडी लंघ मौजूद है। मुआदे जो मकसद डोहन के माफ करण या विसारण ना है। ईरानी कौम पंजी क्यादत का महरूम थी। अमेरिका इसराइल के जुल्मन के कदें भी न विसारींदी। आबनाए हुरमस जा समूरा मामला ईरानी दिसंदो। लबनान समेत समूरन महाजन ते जंग खत्म थियण घुर्जे। अमेरिका से मुआदे बाद ईरान जो बाजाबता मौकिफ सामू अची वो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो तो असं वड़ी कुर्बानी दई पंजे वतन जो दिफा कयो। ईरानी अवाम पंजी फौज जो भरपूर साथ दिनो। आलमी बिरादरी इसराइल ए अमेरिका के जुल्मन की मजम्मत करण में मुकम्मल तौर से नाकाम रही। अमेरिका से मुआदे से जुमे से जिनीवा में सयूं कयूं वेंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: रोड डलते गाढ़ा अच्छा गुल छटायो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: सिंध जी नई माली साल जी बजट 17 जून 2018 ॾींहुं पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मनि जी पघारनि में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन में 8% ऐं पोरियतनि जी माहवार उजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 2 वॻे तलब करे वरितो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास खां अॻु बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो इजलास बि थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रुपियनि खां घटि रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली, सिहत ऐं तालीम वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वेंदी। वॾो वज़ीर माद अली शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में 9 भेरो सिंध जी बजट पेश कंदो।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद आमंद बरतानिया जे विच ओभर वारे मामलनि बाबति वज़ीर सां मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ऐं पॉलिटिकल काउंसलर निकोल रॉबर्ट्स ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। बेतरफ़ी सहकार खे हथी वठण ते ॻाल्हियूं।

0: मिट्टी बंदर जे इलाइक़नि में सामूंडी वेरनि तबाही बचाए छॾी। कमज़ोर बचाव बंदनि खे मुख़्तलिफ़ बंदनि तां घारा पवण सबबि टिनि ॻोठनि में समुंड जो पाणी दाख़िल। इंतज़ामिया कोता रुख न वरितो। रहवासियुनि जो चवणु आहे त सामूंडी वेरनि सबबि बचाव बंद कमज़ोर थी विया आहिनि। समुंड जो खारो पाणी रिहायशी इलाइक़नि में दाख़िल थी वियो आहे। पाणी घरनि में दाख़िल थियण करे ॻोठ अलीबख़्श जत, हाशिम जट ऐं उस्मान देवलो में सामान लुड़ी वियो। रहवासी लड प्लाण ते मजबूर आहिनि। ज़िला इंतज़ामिया का बि सार न लथी।
1: अनमोल उर्फ पिनकी अॻूणे मुड़ुस खां मंशियात ठाहिण सिखी तलाक बाद पंहिंजो कमु शुरू कयो। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ जो मंशियात केस में अबूरी चालान कराचीअ जी अदालत में पेश। टिन औरतुनि समेत पंज जवाबदारनि खे मफ़रूर ॼाणायो वियो। 16 शाहिदनि जी फ़हिरिस्त बि शामिल। अबूरी चालान मूजिबि अनमोल उर्फ पिनकी 16 सालनि खां मंशियात जो कमु करे रही आहे। मुलज़िमा कराची जी पोश एरियाज़ में मंशियात विकिरो कंदी हुई। संदसि घणो कमु ऑनलाइन हलंदो हो।
0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चटाभेटी इम्तिहान में मेरिट जी मुबैना लताड़ ख़िलाफ़ उम्मीदवारनि सीएम हाउस आॾो एहतजाज जो चिताव ॾेई छॾियो। उम्मीदवारनि हैदराबाद में वकीलनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 2024 जी गॾियल चटाभेटी वारे इम्तिहान में 11,000 मां सिर्फ़ 70 उम्मीदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो हो। कामयाब थियल उम्मीदवार सूबाई वज़ीरनि ऐं आला आफ़िसरनि जा मिट माइट ऐं ॼाण सुञाण वारा आहिनि। रोडनि ते एहतजाज करण बावजूद इंसाफ़ न मिलियो त सीएम हाउस आॾो एहतजाज कयो वेंदो।
2: इनशाला कुझु जारी आहे, ठीकु आहे, जीअं चई थी कुझु रिक्वेस्ट
3: कंदासीं।
2: मीडिया खे मिड़ी पुलिस ते कावड़ खणी आहे, पर ॻाल्हि सिधी आहे, छोकिरी खणनि था ॿिया त ॾोहो पुलिस कोन, पुलिस जी कोशिशि जारी आहे। छॾबो कोन, जीअं वञूं था, सुस्ती कान्हे, सुस्त तव्हां निमाईंदव।
1: दादूअ मां 18 महीननि जी बारडी बाज़ियाब न थियण ते सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच पारां SSP दादूअ खे छंट। ॿिनि ॾींहनि में बारडी बाज़ियाब कराइण जी हिदायत। अदालत SSP खे मुखातिब थींदे चयो त ॿुधायो त 18 वरनि जी बारडी राणीअ जी बाज़ियाबी में कहिड़े ताक़तवर धुरनि जी रुकावट आहे। SSP चयो त मामिलो ॿिनि ज़िलनि दादू ऐं नवाबशाह में हुअण सबबि देरि थी रही आहे, वक़्तु ॾिनो वञे। अदालत चयो त बारडी राणीअ खे अॻवा थींदे 3 महीना थिया आहिनि, केस में अञा ताईं का बि अॻभराई न थी आहे। खानापूरी न हलंदी। पुलिस जे DSP KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त छोकिरियूं ॿिया खणनि था ऐं सभिनी जी कावड़ रुगो पुलिस ते आहे।

0: सीटीडी ऐं हसास इदारनि ते गॾियल कार्रवाई। पाबंदी बढ़ियल तंज़ीमनि जा पंज जवाबदार गिरफ़्तार। सीटीडी तर्जुमान मूजिब पाबंदी बढ़ियल तंज़ीम बीएलए जा टे ऐं एफएके जा ब दहशतगर्द गिरफ़्तार कया विया। पाबंदी बढ़ियल बीएलए जे गिरफ़्तार दहशतगर्दनि में इमरान ज़हीर अहमद ऐं मोहम्मद रियाज़ शामिल। एफएके जे ॿिनि दहशतगर्दनि हजतुल्ला ऐं हबीबुल्ला खे बि गिरफ़्तार कयो वियो। तर्जुमान मूजिब गिरफ़्तार दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दीअ जी मनसूबाबंदी करे रहिया हुआ।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में धारधार वाकियनि दौरान पंज ॼणा ॿुॾी फ़ौत। हैदराबाद जे पिंजारी वाह में ॿुॾी वियल पंजाब वासी सागर इक़बाल ऐं मोहम्मद राशिद जा लाश कया विया। साले पट जे ॻोठु दरगाह हिमत अली शाह वटि ॿ ॿारणियूं आयशा ऐं मुस्कान मला ॿुॾी फ़ौत। सांगड़ वेझो समाथरी शाख में ॿुॾी वियल पोइत ग़ुलाम मुस्तफ़ा मलाह जो लाश।
0: जेकबाद भरिसां कार इंसाम हेठि नारी क़तल। उस्ताब अलीनोबाद में जवाबदारनि गोलियूं हणी 21 वरियनि जी मरियम बिरोई खे क़तल करे छॾियो। लाश इस्पताल मुंतकिल। बख्शापुर जे ॻोठु हकीम माची में बि औरत कार इल्ज़ाम हेठि क़तल। जवाबदारनि लाश बि गुम करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाकिए जी जाच कई पई वञे।
1: फैज़गंज में कारी करार ॾिनल औरत अदालत में पेश। अदालत पारां खेसि तहफ़ुज़ फराहम करण जो हुकुम। पुलिस नारीअ ते कारा इल्ज़ाम हणंदड़ संदसि भाउ ऐं कारा इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान खे गिरफ़्तार करे वरितो। गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठु ख़ैर मोहम्मद बहिण वासण बानू बहिण तहफ़ुज़ जो मुतालबो कयो हो। औरत जे एहतजाज बाद SSP खैरपुर नोटिस वठी थाणे ते मुंतकिल कयो हो। पुलिस औरत बानूअ खे अदालत में पेश कयो। पुलिस मूजिब नारीअ जे भाउ याकूब ऐं नारी सां कारो करार ॾिनल साजिद बहिण खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे।
0: برطانیہ میں 16 سالن کا گھٹ عمر وارن بارن کی سوشل میڈیا کے استعمال تے پابندی لاگو۔ برطانوی وزیر اعظم پابندین جو اعلان کردے چھو تے بارن کے آن لائن خطرن کا محفوظ رکھن لائے سوشل میڈیا کے استعمال تے پابندی لگان جو فیصلو کیو۔ بارن کے والدین ایں تعلیمی ماہر پارا فیصلے جی آجیاں

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हुकूमत बजट में हेरा फेरी ए हथ करे वही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के आगाही। नवीद कमर की ब्रीफिंग का पोई बिलावल भुट्टो सुभाने ऐवान में रिथल बजट तकरीर मुलतवी करे छी। हुकूमत का अंग अखरन में फेरफार बाबत वजाहत वठण जो फैसलो। जरिन मूजिब MNA नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो के ब्रीफिंग दींदे बुधायो तो पीपल्स पार्टी असा शेयर कल बजट ऐवान में पेश कल बजट के अंग अखरन में वो फर्क है। ऐवान में यह बजट पेश पीपल्स पार्टी के डेखारी वही हुई।
2: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून अरबा डी पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मन जी पगार में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मन जी पेंशन में 8%, बोरियतन जी माहवार उजूरे में 20% वाजिब इम्कान। सिंध के गवर्नर दयाल अशफी सिंध असेंबली जो बजट इजलास अरबा डी 2 बजे तलब करे वरतो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी लाए सिंध काबिना जो इजलास भी थी। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपये का घट रहने जो इम्कान। मौसमी तब्दीली सेहत तालीम वारन मनसूबन के अहमियत दिनी वेंदी। वो वजीर बहादुर शाह नाणे वारे वजीर की हैसियत में 9 भेरों सिंध जी बजट पेश कंदो।
1: अमेरिका ईरान विच में मुआदे ते सयूं थी चुकी आहिन। जुमे दिहाड़े सयन वारी बाज़ाब्ता तकरीब में शिरकत करण या न करण बाबत सोचे रहो आया पर जेडी वेंट्स तकरीब में शिरकत जरूर कंदो। मुआदे जो मसवदो सयन बाद कहीं भी वक्त जारी कयो वेंदो। आबनाए हुर्मुज भी खुली वही है। जुमे ताईं जहाजन की अच वञ मुकम्मल तौर ते बहार थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप जो चवण हो तो ईरान के एटमी हथियार हासिल करण का रोकण लाइ सख्त निगरानी जारी रही। पाबंदी में नरमी तेस ताईं नथी थी जेस ताईं ईरान उहो नथो करे जेको अमेरिका चाहे तो। ईरान से लागापा खुशगवार थियण की उम्मीद है। अहम यो है तो तेल जो कीमतू घट थियन स्टॉक में बेहतरी अचे। हाँ फ्रांस भी आबनाए हुर्मुज में मदद लाइ तैयार है।

0: अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर बल्कि अमन और मुकाल
1: पाकिस्तान की चाकड़ी कामयाब अमेरिका ईरान समूरन वाजन से जंग खत्म कर छी बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वो शुरुआती वायदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में 19 जून से वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ और बिया शरीक थन्दा। कौमी असेंबली में खिताब कदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चाहे तो जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकली चुको है। ईरान अमेरिका लुबनान समेत समूरन वाजन से जंग रोकने का ऐलान किया है। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून जुमे वाले ढी जनीवा में थी जैसी मेजबानी पाकिस्तान कदो ये बिन मुल्क में अमन वायदो नफर दहाब ए सिफातगर की फतह है। मुआहदे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई समेत सभी के मुबारक दिया तो जैस तीन मुआहदे जहा समर अवाम तई न पहुंचा सुख जो सा न खड़स।
2: मकसद अफ करण या विसारण ना है। ईरानी कौम पंजी क्यादत का महरूम थी। अमेरिका ए इसराइल के जुल्मन के कदें भी न विसारींदी। आबनाए हुर्मस जहा समूरा मामला ईरानी दिसंदो। लबनान समेत समूरन महाजन से जंग खत्म थियण घुर्जे। अमेरिका सा मुआहदे बाद ईरान जो बाज़ाब्ता मौकिफ सामू अची वो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई वड़ी कुर्बानी दी वतन जो दिफा किया। ईरानी अवाम पंजी फौज जो भरपूर साथ दिनों। आलमी बिरादरी इसराइल ए अमेरिका के जुल्मन की मजम्मत करण में नाकाम रही। अमेरिका सा मुआहदे से जुमे से जनेवा में सयूं कई वेंद सयुन का अग ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्क जहा दौरा भी कंदा। अमेरिका के ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाय डिघो सफर करण पौ।
1: तबाह पायलट शहीद ISPR मौजिब जहाज मामूल वाली तरबियती उड़ान दौरान किरी तबाह थो। हादसे के नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला एरिया जो लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शहीद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हथियारबंद फौजन के सरबराहन पारा हादसे से दुख जो इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ घरू वज़ीर मोहसिन नकवी वडे वज़ीर मुराद अली शाह बेन पारा हादसे में बिन जानन के नुकसान से अफसोस जो इजहार।
2: स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी जो ऐलान कर छो। व्याज की शरह 11.5% बरकरार रखने जो ऐलान। स्टेट बैंक इजलास बाद पॉलिसी जो ऐलान किया।